0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 सुबह के 5:53 और 42 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। सुप्रभात कार्यक्रम होगा 6:05 पर। गुड मॉर्निंग दिल्ली, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:05।

पर। 8:15 पर आप सुनेंगे यादों की एक मीठी सरगम सॉन्ग। दिल के तराने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 9 बजे से। वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम होगा दिन में 10:05 से। दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स। रेनबो हेल्पलाइन, ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 से। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना। 2:15 पर होगा वक्त है बदला सॉन्ग। रेडियो डॉक्टर, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 3 बजे। अल्फा जैन, ये कार्यक्रम होगा शाम 4:05 से। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिटी लाइट्स। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसद

0: वैद्य सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ता ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है। उठो जागो और

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Well, my dear friends, we will now listen to a very special, a deeply soulful and spiritual romantic expression. Yate ami kan huniyabo. Ami kan sob janiye je some romantic songs rise above the ordinary love and touch the soul. Rup Kumar Rathore lagabaste huniyabo Anwar Filmra.

इंडिया होने वाला मॉडर्न रोमांटिक क्लासिक विद डीप फीलिंग एंड मेमोरेबल कंपोजिशन के लगा वस्ते गैंगस्टर फिल्म ब्रा म्यूजिक दिसे प्रीतम लिरिक्स साइड कार्ड्री

0: 1036, and we have the first caller with us. Hello.
1: Hello, Sanjay sir, namaskar.
0: Hello, namaskar. Digesh ji, program mein swagat hai. Aur bataiye, aaj ka kya main kya karna hoga aapke liye?
1: जी सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, गुड मॉर्निंग.
0: जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग.
1: और आप कैसे हो सर जी, क्या हाल चाल है?
0: एकदम बिल्कुल अच्छा है. और आप भी कैसे हैं?
1: ठीक है सर. आज भोजन में दाल बाटी बनाई थी, हमारे निमाड़ में बहुत प्रसिद्ध है.
0: अच्छा.
1: जो व्यंजन बोल सकते उसको.
0: अच्छा अच्छा.
1: और दाल तुअर की दाल और गेहूं के आटे की बाटी बनाते हैं गोल गोल.
0: अच्छा, कुछ खास दिन है आज? मतलब ऐसा खाना पीना?
1: सर, मेहमान आते हैं ना घर पे.
0: अच्छा.
1: मेहमान आए हुए थे. अच्छा. तो उनके लिए बनाना पड़ता है.
0: अच्छा.
1: और हमारा भी मन करा कि बनाना चाहिए.
0: तो आज का मेहमान कौन है?
1: वो हमारे जीजाजी आए थे.
0: अच्छा.
1: जो कि महेश्वर से में रहते हैं, महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की नगरी है, वहाँ पर उन्होंने किला भी बनाया है अहिल्याबाई ने.
0: अच्छा.
1: और उन्होंने अपने देश भारत देश में बहुत जगह किलों का निर्माण करवाया है.
0: जी जी जी.
1: जैसे इंदौर में राजवाड़ा है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है इंदौर में. और फिर उन्होंने बनारस उत्तर प्रदेश में भी कुछ मंदिर बनवाए है अहिल्याबाई होलकर ने.
0: अच्छा, क्या बात है. और बताइए, आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: जी सर, फिल्म आज का अर्जुन का गाना चली आना तो पान की दुकान पे.
0: आज का अर्जुन.
1: आज का अर्जुन.
0: और गाना का टाइटल बताओ.
1: फिल्म का नाम?
0: नहीं नहीं नहीं, फिल्म का नाम हो गया, लेकिन टाइटल सॉन्ग बताओ.
1: चली आना तो पान की दुकान पे.
0: चली आना. ओके,
1: ये वाला गाना.
0: ठीक है. और किसी का नाम लेना चाहूंगा?
1: सर, ये सभी के लिए, सभी लिसनर्स और आरजे के लिए.
0: अच्छा
1: जी सर.
0: ठीक है. तो थैंक यू सो मच दुर्गेश जी, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा. और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग.
1: जी सर,
0: बाय. तो माय डियर फ्रेंड्स, निखिल नागर रेगुलर लिसनर दुर्गेश नागनपुरी গন্ধুয়া মধ্য ব্রিটিশ পর তাই পয়লা খল থাকিছে আর তাই রিকুয়েস্ট করে গীত আমি শুনি হব আজকা অর্জুন ফিল্ম রা অমিত কুমার আর অলকা ইগনিক অবস্থে মিউজিক দিছে পাপি লাহারি লিরিক্স অঞ্জন.

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Well, my dear friends, আমি খেলাম আমাদের নেক্সট কলার থেকে আছে। হ্যালো
2: হ্যালো স্যার, নমস্কার।
1: হ্যালো নমস্কার, হু ইজ অন দ্য লাইন?
2: जी, गाने के बोल हैं सोला और शबनम, फिल्म का नाम है।
1: आपका शुभ नाम पहले बताइए।
2: मेरा नाम है भगवान सिंह परमार, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से।
1: ओके भगवान सिंह,
2: प्रोग्राम फिल्म का नाम है सोला और शबनम, गाने के बोल हैं तू पागल प्रेमी आवारा।
1: सोला और शबनम?
2: जी
1: ओके, सोला और शबनम मैं देखता हूँ। सोला
2: और
1: सपना, मेरा पास शायद ये म्यूजिक बैंक में नहीं है, और कोई दूसरा फिल्म होगा। फिल्म का नाम बताइए।
2: जी सर, तो आप सुना दीजिए, बेवफा सनम का।
1: बेवफा सनम,
2: मेरी निकली जाए जहां।
1: बेवफा सनम का टाइटल सॉन्ग बताइए।
2: जी सर, मेरे निकली जाए जहाँ, अगर ये मिल जाए इसमें आप गीत बता दीजिए कौन कौन से हैं।
1: नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ओ ये मेरे अम्मा एक है, वफा ना रस आये एक
2: जी,
1: है
2: जी जी,
1: और अच्छा सिला दिया
2: एक जी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये सुना दीजिए।
1: ये सुना दीजिएगा
2: जी।
1: ठीक है, और क्या किसका

0: जी सर, बस कार्यक्रम सुन रहे थे आपका।
1: ओके
0: जी, और कॉल मिला है तो मिल भी गया सर, बड़ी खुशी हो जाती है अब आपके यहाँ कॉल मिल जाता है सर।
1: जी जी जी, और बताइए किस किस को ये डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: जी हाँ सर, केशव सिंह राजपूत जी है, राम बाबू शर्मा जी है, मांगीलाल चंदेल जी है, पूरन वर्मा जी है, राकेश जी है, शिवना से अविनाश जी है, भाईकोन मुंडा जी है, अमल भस्मचारी, विमल भस्मचारी, और हमारे एक मित्र है बाया से रमेश प्रजापति जी, और पूनम दीदी है कानपुर से। सभी श्रोताओं को जो लाइव सुना सभी को डेडिकेट रहेगा सर। और सीमा लोहट जी है विदिशा से।
1: ओके, और भगवंत सिंह जी बताइए आज मतलब आपका काम क्या है, आप क्या करते
0: हैं? जी सर, मेरा काम है खेती किसानी, मैं किसान हूँ सर, खेती किसानी करता हूँ सर।
1: ओके
0: जी,
1: और आज का मतलब दिन कैसे है, बहुत गर्मी का?
0: जी सर, हमारे इधर तो 45 टेम्परेचर रहता है सर, और अभी नौतपा चल रहे हैं तो ज्यादा गर्मी रहती है नौतपा में सर।
1: जी जी जी, तो
0: 2 तारीख तक नौतपा समाप्त हो जाएंगे, फिर कम गर्मी हो जाएगी थोड़ी।
1: जी, तो ख्याल रखना, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और सुनिए आपका सॉन्ग।
0: धन्यवाद सर, आपको डेडिकेट रहेगा सर।
1: थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमी खलनागर रेगुलर लिसनर भगवंत सिंह मध्य प्रदेश पर दही रिक्वेस्ट को लगा गीत अमी खान नहुनी अब सुनो निकाम लगा वस्ते पीवा फर्स्ट सन्नाम फिल्म रा। म्यूजिक दिस निखिल विनय, लिरिक्स योगेश, होने की ना एंजॉय करवी माय डियर फ्रेंड्स।

0: हिंदुस्तान हमारा।
1: हाँ हाँ
0: हाँ ये समूह।
1: और बताइए किस किस को ये डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: आप है?
1: ओके थैंक यू।
0: और मेरा दोस्त है राकेश भगवान जी परवान जी है, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमर सावर और अमर है, विमल है और जितने कॉलर आकाशवाणी कोई माँ के चाहने वालों को लिए जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, जो श्रोता मेरा नाम लेता है उन श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ सर ये गाना।
1: अच्छा ठीक है बहुत खूब। और बुरन सिंह वर्मा जी आज राजस्थान में भी थोड़ा गर्मी का खबर है कैसे?
0: आज ही सर गर्मी पड़ रही है यहाँ और अभी भी गर्म लू चलने शुरुआत हो गई सर। आपके उधर कैसा हो रहा है मौसम?
1: इधर मौसम इतना गर्मी भी नहीं है इतना ठंडी भी नहीं है, थोड़ा एकदम बिल्कुल ठीक हूँ इधर।
0: जी जी यहाँ तो मौसम ऐसा है सर बहुत गर्म हो रहा है।
1: ठीक है तो ख्याल रखना और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
0: थैंक यू सर धन्यवाद।
1: यू आर वेलकम बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स अमी खलना का रेगुलर लिसनर था कि ऐसे पुरान सिंह वर्मा फ्रॉम राजस्थान ताई रिक्वेस्ट को लगा गीत अमी खान हुनी वो एक देशभक्ति गीत को ऐसे ताई किस्मत फिल्म रहा हुनी के ना एंजॉय करूँ भी माई डियर फ्रेंड्स।

0: Well, my dear friends, I'm looking over the next caller. Hello.
1: Hello.
0: Hello, who is calling?
1: Sir, namaskar.
0: Namaskar.
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रहती जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: ओके रमेश जी, प्रोग्राम में स्वागत है।
1: कैसे हो?
0: एकदम बिल्कुल अच्छा है। और आप कैसे हैं?
1: बस मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी का आनंद ले रहा हूँ। 42 पारा चल रहा है, गर्मी में बैठे और आपका प्रोग्राम सुन रहा है, ठंडक ले रहा है प्रोग्राम की।
0: क्या बात है रमेश जी, गर्मी का आनंद ले रहा हूँ
1: जी।
0: ठीक है, और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: कुली नंबर वन है क्या?
0: कुली नंबर वन? आप पहले भी कुली नंबर वन रिक्वेस्ट किया था ना?
1: कब?
0: लास्ट टाइम फोन इन, जो फोन इन प्रोग्राम था। हाँ, कुली नंबर वन है
1: 1995
0: का।
1: अरे वो यार, आप यार आज जेट चल रहा है, सुनना चाहता हूँ जेट की दोपहर में गर्मी लग रही।
0: ठीक है, बताओ कौन सा बोला
1: जी। तो कुछ मित्रों को याद कर लो क्या?
0: हाँ, लेकिन पहले पता ही है कौन सा बोला गीत, मतलब कुली नंबर वन से कौन सा बोला?
1: वो जेठ की दोपहर में गर्मी लगे, हैरानी गर्मी लगे।
0: अच्छा, ये देखो मैं आप मिर्च लाकी दो, ये वाला
1: जी,
0: मिर्च लाकी दो, ये वाला गीत।
1: नहीं नहीं, जेठ की दोपहर में गर्मी लगे, हैरानी गर्मी लगे, आके बिठा लो जुल्फों की छैया, वो वाला गाना है ना?
0: ये वाला मैं नहीं देखता हूँ।
1: नहीं है?
0: नहीं है मेरा पास।
1: तो फिर वो नागिन है क्या?
0: क्या बोला?
1: नागिन।
0: नागिन है।
1: तेरे इक्स का मुझसे हुआ क्या असर है, वो वाला गाना है।
0: तेरे तेरे द्वार खाता एक जोकी, ये वाला।
1: हाँ ये सुना दो, तेरे द्वार खाता एक जोकी।
0: अच्छा ठीक है, और पता है आप नाम ले लो।
1: हाँ, हमारे मित्र है भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है कानपुर से, अविनाश जी है, पूर्णिमा जी है, राकेश है शिमला से, और विमल भस्माकारी है, अमल भस्माकारी है, गोल्डी जी है, अमर सिंह साहू है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्र है, लोकेंद्र वर्मा, लोकेंद्र वर्मा है नानाखेड़ी से।
0: ओके, थैंक यू सो मच रमेश जी, आपसे बात हुआ अच्छा लगा, और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: जी जी जी, धन्यवाद।
0: यू वेलकम, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमी खलना का रेगुलर लिसनर रमेश प्रजापति जी फ्रॉम मध्य प्रदेश, ताही रिक्वेस्ट हुआ लगा गीत हुनी अब नगीन फिल्म रही हिमांत कुमार अवस्थे। म्यूजिक दिस हिमांत कुमार, लिरिक्स राजेंद्र कृष्ण।

0: Well, my dear friends, I'm the next caller, Pagasa. Hello? Hello?
1: Hello, hello, namaskar.
0: Hello, namaskar. Who is on the line?
1: I'm Rakesh, Shimla.
0: Okay, Rakesh, Shimla. Program is Swakata hai. Aur bataiye, aaj kaun sa wala geet suna chahunga?
1: Aaj main geet suna chahunga, film ka naam hai Muskan.
0: Muskan, okay.
1: Ji.
0: Aur bataiye, kaun sa wala?
1: Usme ek gana hai, Ishq Rulata Hai.
0: Ishq Hasata Hai.
1: हाँ
0: और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा
1: तो सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा
0: थैंक यू
1: पूर्ण वर्मा जयपुर राजस्थान से है रमेश प्रजापति है भगवान सिंह परमार है और राम नरेश कंजर है और रमेश प्रजापति और अमर बसमाचार्य है और विमल बसमाचार्य है और जितने भी तमाम सुनने वाले श्रोता और सभी के लिए ये गाना और अविनाश टेली है त्रिपुरा से okay. और सभी के लिए गाना डेडिकेट होगा और आपकी तरफ का मौसम कैसा है
0: मौसम बिल्कुल अच्छा है और आपका तरफ से कैसा है क्या मौसम का
1: बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जैसे अभी रमेश प्रजापति बता रहे थे कि 40-42 डिग्री तापमान है लेकिन हमारे तो 25-30 तक तापमान है
0: हाँ यहाँ पे कोहिमा में भी ऐसा ही है लेकिन
1: हिमाचल में और कोई वहाँ पे तो एक जैसा मौसम होता है यहाँ बिल्कुल 25-30 तक रहता है
0: जी जी जी और पता ही रमेश आज का दिन क्या काम कर रहा है
1: बस अभी तो अब देख रहे हैं कि अब जो हमारे एप्पल के पेड़ है उसमें सैंपल लगे जब जुलाई में हम आपके सेब तोड़ने को आ जाए तो पूरे भारत में बेचेंगे
0: अच्छा क्या बात है आपका एप्पल का खेत है
1: जी जी हमारे एप्पल का खेत है हमारे यहाँ एप्पल होते हैं और खमानी बादाम अखरोट ये कीवी भी हो सकती है कहीं कहीं तो कीवी भी होती है
0: क्या बात है रमेश जी राकेश जी नेक्स्ट टाइम हम एप्पल आपसे ऑर्डर करना जाऊंगा
1: बिल्कुल
0: ठीक है थैंक यू सो मच राकेश जी आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग
1: जी जी धन्यवाद
0: ओके यू वेलकम बाय तो माय डियर फ्रेंड्स राकेश फ्रॉम सिमला आमी खेल लगा रेगुलर लिसनर थाकी आसे वेल माय डियर फ्रेंड्स मोय लगा मुक्ते रमेश राकेश इदुखान सब दो आही थाकी आसे एनीवे राकेश जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और राकेश तोलिया आजी जानी आसे के ताई एप्पल लगा खेती करी आसे और अलग अलग फ्रूट्स कान लगा खेती करी आसे तो वेल भाल भाल करी थाकिबे और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग दाई रिक्वेस्ट कर लगा गीत आमी खान शुनियाब Suno Nikam aro Anurudh Burwal awaste music dise Nikhil Vinay lyrics samir hunik na enjoy korbi aro tai naam lo asobke itu ki titikir kore diyeche

0: Well, my dear friends, we have just enough time for one last call. So, I'm going to say that today is the last lucky caller. And that is the request that I'm going to hear. So, we have our last lucky caller with us. Hello.
1: Hello, sir. Namaste.
0: Hello, namaste. Who is calling?
1: जी ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ आकाशवाणी कोहिमा का नियमित श्रोता।
0: ओके प्रेम सिंह जी प्रोग्राम में स्वागत है और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा।
1: सर उससे पहले मैं बता दूं आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: मैं भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। और आज का दिन कैसा रहा?
1: जी मेरा दिन काफी अच्छा है। मेरा कॉल आपसे लग गया तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। अभी हमारे खेतों में मतलब ट्रैक्टर चल रहा है।
0: अच्छा क्या क्या?
1: जी हाँ
0: क्या खेत है?
1: जी खेत में अभी जैसे बरसात होगी ना जुलाई में
0: जी,
1: तो उसके लिए पहले से खेत तैयार करना पड़ता है सोयाबीन की फसल लगाने के लिए।
0: सोयाबीन का?
1: हाँ जी।
0: अच्छा
1: काफी मात्रा में सोयाबीन पैदावार होती है हमारे यहाँ पे।
0: ओके
1: जी। और उसके लिए मतलब 15 से 20 दिन पहले खेत को तैयार करना पड़ता है हमें ट्रैक्टर जो है जुताई करने के बाद में।
0: और कितना बड़ा खेत है?
1: जी काफी बड़ा खेत है, ये समझिए कि 40 बीघे का एक खेत है हमारे पास में।
0: क्या बात है क्या बात है, बहुत
1: जी हाँ।
0: या थैंक यू सो मच। और बताइए आज इसका इसका साथ तो कौन सा गीत सुनना चाहूंगा?
1: जी एक मिनट बताऊँ सर आपको। हाँ फिल्म का नाम है
0: जी
1: बड़े मियाँ छोटे मियाँ।
0: ओके
1: हाँ इसका है किसी डिस्को में जाए
0: पारी मिया। ओके
1: जी हाँ मिल जाएगा सर ये गाना आपके यहाँ
0: पारी मिया में। देखता हूँ पारी मिया छुट्टा यस। और टाइटल सॉन्ग बताइए
1: जी इसका है ना वो किसी डिस्को में जाए किसी होटल में खाएं कोई देख लेना हमें यहाँ घूम के आए हम।
0: अच्छा इसमें तीन थू गाना है मैं बताता हूँ आपको।
1: जी बताइए।
0: मस्त मलांग झूम एक है और रंग इश्का ये एक रिदक्स वर्जन है और एक ट्रेडिशनल वर्जन है। कौन सा बोला पारे मिया छुट्टी मिया का फिल्म से यही है
1: जी हाँ।
0: तो कौन सा बोला गीत सुनना चाहूंगा?
1: जी अभी आपने जो दूसरे नंबर पे बताया ना तो वो सुनवा दीजिए।
0: ठीक है और किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
1: जी नाम तो जैसे आपको बताऊं कि रेगुलर चल ही रहे हमारे सदस्य होता है कि नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं
0: जी।
1: ये हमारा ऐसा एक ग्रुप बना हुआ है सर जैसे कि हेलो फरमाइश एरिया एकता ग्रुप, उसके मतलब 80 से 90 मेंबर है हमारे।
0: क्या बात है।
1: जी हाँ उसमें जैसे आशुतोष अभिनय संगीता जी कानपुर की संगीता जी और रमेश टेलर का भी कॉल आया था, पूर्व वर्मा जी का कॉल आया था। ये नियमित श्रोता है और बार बार कॉल करते रहते हैं, एक दूसरे की फरमाइश पूरी करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं।
0: ठीक है ठीक है।
1: और एक बात और जैसे हमारा आकाशवाणी कोहिमा में कॉल लग जाता है तो हमारा मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होता है, बड़ी अच्छा लगता है कार्यक्रम
0: हमें।
1: जैसे है ना जी आपको बता देते हमारे दोस्त भगवान सिंह परमार है ना
0: जी,
1: वो ग्रुप में अब भी डालते रहते हैं कि मतलब कोई ना कार्यक्रम इतने बजे से शुरू होगा इतने बजे तक चलेगा, अगर सर आएंगे तो 1 बजे तक चलेगा और मैडम आएंगे तो 12:30 बजे तक चलेगा, ऐसी जानकारी मतलब हमारे श्रोता के बीच में साझा करते रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा ठीक है
1: जी।
0: थैंक यू सो मच प्रेम सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपसे बहुत बात हुआ बहुत अच्छा लगा। और सुनो
1: जी थैंक यू सो मच। ओके बाय।
0: ओके बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स अमी खान लगा रेगुलर लिसनर उज्जैन मध्य प्रदेश पर प्रेम सिंह लगा आवाज अमी खान खुदा को होनी थकी है और यते ताही लास्ट लकी कॉलर थकी है।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से लेकर आए हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। और रेनबो हेल्पलाइन में आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी आरजे, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त रॉकिंग रश्मि। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वस्थ बाल और चमकदार त्वचा ना केवल आपकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं बल्कि आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। लेकिन आजकल की जीवन शैली में काफी मुश्किल हो गया है स्किन और हेयर को स्वस्थ रखना। इसके लिए लोग तरह तरह के उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, लेकिन सब बेकार, ज्यादा कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो क्या करें, क्या छोड़ दें, टूटने दें बालों को, स्किन को खराब होने दें, ध्यान ना रखें, आखिर करें तो क्या करें? इसी का इलाज है आयुर्वेद में। कैसे पा सकते हैं आप हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन आयुर्वेद में, इसका क्या है जवाब, यही बताने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर दीपाली पिसाल। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते टू ऑल और थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम अपना समय निकालकर यहाँ आने के लिए। हमारे लिसनर्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मुझे लगता है आज का जो प्रोग्राम है उनके लिए अच्छा खासा मतलब फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आजकल हर कोई ग्लास स्किन चाहता है कि मेरी स्किन इतनी अच्छी हो, मेरे बाल इतने खूबसूरत हों कि मैं जहाँ भी जाऊँ लहराते हुए मेरे बाल चलें। तो आई थिंक हमारे लिसनर्स बहुत ही मतलब खुश हो रहे होंगे कि आज बहुत ज़बरदस्त विषय लेकर हम लोग आए हैं रेनबो हेल्पलाइन में। तो प्लीज़ हमारे डियर दोस्त, यदि आप हमें सुन रहे हैं तो जल्दी से हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे फोन नंबर हैं 0112342108 और 2342108। साथ साथ यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन की, क्योंकि आजकल हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर दिखने में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे बाल और हमारी त्वचा यानी हमारी स्किन। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और उसके अनुसार स्वस्थ बाल और चमकदार त्वचा की वास्तविक पहचान क्या है?
1: देखो, आयुर्वेदा में हेल्दी स्किन या हेल्दी हेयर्स देखा जाए तो ना सिर्फ लाइक फेयर स्किन होना या फिर विदाउट एनी स्पॉट्स स्किन होना, ऐसे
0: जी,
1: नहीं है
0: जी.
1: ठीक है, हेयर्स एकदम स्ट्रेट होना, दैट डजंट मीन कि आपके हेयर्स आर हेल्दी। ओके, तो आयुर्वेदा जो है ना, हेयर की हेल्थ या स्किन की हेल्थ ऑलवेज को रिलेटेड विथ योर गट हेल्थ। ठीक है, जो आप खाना खाते हैं, जो भी डाइजेशन आपका अगर प्रॉपरली हो, सारा न्यूट्रिशन आप प्रॉपरली ले रहे हो, लाइफस्टाइल आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके हेल्दी हेयर हेल्दी स्किन हो सकती है। ठीक है, आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, जैसे रात में प्रॉपरली नींद लेनी, 8 आवर्स की आपकी स्लीप होनी चाहिए, इसमें भी आपको जल्दी सोना है। ठीक है, नावाडेज बिकॉज ऑफ दिस इंस्टाग्राम बोलो, रील्स के चक्कर में या फिर ऑफिस की इसमें भागा दौड़ी में, हम लोग वो जो रात का जो नींद है वो प्रॉपरली नहीं होता, तो सुबह लेट उठते हैं, इसकी वजह से आपके डाइजेशन पे भी इफेक्ट करता है। आप जो फूड खा रहे हो वो मोस्टली इट्स अ प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, फास्ट फूड होता है खाने में, तो ये सारा अफेक्ट करता है। इसकी वजह से आपकी स्किन या फिर हेयर इतने अच्छे से बन नहीं पाते, लेकिन एज पर आयुर्वेदा। ओके, तो ये है, जैसे कि बॉडी में ना आयुर्वेदा बोलता है कि दोषाज रहते हैं, ठीक है, वात पित्त कफा, तो ये जब बैलेंस्ड रहते हैं तो अच्छा स्किन और अच्छे हेयर प्रॉपरली दिखता है, लाइक स्किन आपकी हाइड्रेट रहती है, स्मूथ रहती है, सॉफ्ट रहती है। बाल भी 50 to 100 स्ट्रेंथ पर डे गिरना इज नॉर्मल थिंग, ठीक है, मगर इससे ज्यादा अगर आपके बाल गिर रहे हैं, कहीं पे थिनिंग हो रहा है या हेयरलाइन पीछे चली गई है, दैट मीन्स कहीं तो कुछ तो बॉडी में गलत है।
0: तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बाल और हमारी त्वचा है वो बेसिकली हमारे शरीर के अंदर से बनकर आ रहे हैं, कि यदि हमारा खान पान सही होगा, हमारा लाइफ स्टाइल सही होगा, तो ये हमारी जो त्वचा या हमारी स्किन और साथ में हमारे जो बाल हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आगे हम और भी बात करेंगे, इससे पहले कि हम आगे बात करें, एक प्यारा सा ट्रैक आपके लिए लेकर आई हूं मैं, सुनिए, एंजॉय कीजिए और वापस आइए हमारे पास, क्योंकि हम लेकर आए हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली पिसाल, जो आपको बता रही हैं किस तरह से आप अपनी स्किन और अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं।

0: जी हाँ बिल्कुल, प्रियवर बन जाएंगे यदि आप खूबसूरत नजर आएंगे तो सामने वाला आपको उतनी ही प्रेम की नजर से देखेगा, और मतलब एक कहते हैं ना, दिल में सामने वाले के एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। क्या खूबसूरत मतलब पर्सनालिटी है इस इंसान की, है ना। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन की। तो जैसे कि मैम ने बताया कि जो हमारे शरीर में तीन तरह के दोष होते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हमारी कोई भी तकलीफ होती है, कोई समस्या होती है, तो उसका सीधा असर हमारी स्किन पर पड़ता है या हमारे बालों पर पड़ता है। जी अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि हेयर साइकिल भी होता है, तो हेयर साइकिल क्या चीज़ है?
1: ओके, सो आपका जो नॉर्मल हेयर है ना
0: जी,
1: वो साइकिल मतलब उसकी एक हेयर साइकिल होती है, ठीक है। तो इसमें तीन फेजेस बताए गए हैं, जैसे एनेजिन, कैटेजिन और टेलिजिन फेज। तो एनेजिन फेज ये जो होता है ये ग्रोइंग फेज रहता है, ठीक है। मतलब इसमें ना हेयर की ग्रोथ होती है, एंड ये एक अराउंड 2 से 7 साल तक ये फेज में रहता है बाल आपका। फिर 7 ईयर्स के बाद वो खुद से झड़ जाता है, ठीक है। अगर आपका खान पान प्रॉपरली हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छे से हो, तो ऑफकोर्स ये फेज 7 ईयर्स तक रहती है
0: जी।
1: या फिर अगर आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये 2 साल के अंदर ही ये बाल टूट सकता है, 2 साल के बीच में। कैटेजिन फेज जो रहता है वो ट्रांजिशन फेज रहता है, जिसमें बाल की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, धीमी धीमी होती है बालों की ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें फॉलिकल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। और ये फेज जो रहता है ये अराउंड 2 to 3 weeks तक होती है। फिर टेलोजन फेज जो रहता है ना ये शेडिंग फेज रहता है। दिस इज वेरी नॉर्मल, मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज है शेडिंग फेज जो रहती है। तो ये 2 से 4 महीने तक होती है, और पुराने जो भी आपके हेयर फॉल है वो मतलब हेयर फॉल हो जाते हैं और नए ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल साइकिल है। अगर इसमें कहीं बिगाड़ हो गया तो हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है और फिर लाइक थिनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है।
0: अच्छा, जो ये किसी भी वजह से होते हैं तो क्या ये वजह यही है कि जैसे आजकल बच्चे लोगों की नींद पूरी नहीं होती, देर रात तक स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, या मतलब सभी को ही आजकल एक हो गया है कि हमें देर से सोना है, कुछ ना कुछ अपने ऑफिस वर्क होते हैं या टेंशन है, स्ट्रेस है, इवन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है आजकल वातावरण में, तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है बालों को झड़ने का या फिर स्किन के खराब होने का?
1: यस, ये सारी रीजंस है। इसी के साथ साथ आपका हार्मोन्स भी
0: चेंज होते हैं,
1: यस, इसकी वजह से भी हेयर फॉल होना या फिर एक्ने आना या पिगमेंटेशन आना, ये सारी चीजें हो सकती है।
0: अच्छा, आजकल कम उम्र में बाल तो झड़ ही रहे हैं लेकिन साथ साथ मतलब सफेद भी होने लगे हैं, तो इसका क्या रीजन है मेनली?
1: इसका सी एज पर आयुर्वेदा जैसे ना मैंने आपको बताया था कि 3 दोष है वात पित्त कफ। जब ये पित्त बढ़ जाता है ना तो ये ग्रेइंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जो ओल्ड एज है अभी भी उनके कई बाल ब्लैक है, ठीक है, मगर अभी बच्चों में लाइक 10 ईयर्स या 6 ईयर्स के बच्चे में भी ग्रे हेयर या फिर मतलब बहुत कम उम्र में
0: भी सफेद बाल
1: होना जी। तो दिस इज बिकॉज स्ट्रेस या फिर उनका जो खान पान प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जैसे पैकेट फूड चिप्स वगैरह खाने में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट लेने में आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपके दोषास पे अफेक्ट करती है, स्पेशली पित्त दोषा पे। तो इसकी वजह से ग्रेइंग स्टार्ट हो जाता है। सो प्रीमैच्योर ग्रेइंग जो है वो काफी हद तक आप रिवर्स बैक भी कर सकते हो, मगर इसमें आपको आपके सारे जो लाइफ स्टाइल चेंजेस या फिर आपका जो खान पान है, प्रॉपरली नरिशमेंट लेना है आपको, ये सब करके आप इसको रिवर्स बैक कर सकते हो।
0: क्या बात है, क्या मैम ने इतनी अच्छी बात बताई है कि यदि आपके ग्रे हेयर हो गए हैं या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक ये हमारे जो कॉलर हैं वो चले गए हैं फोन रखकर। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे जो लिसनर हैं उन्होंने क्या सवाल पूछा है। एक मैसेज आया है, लिखने वाले हैं ओके वेट की एक मिनट। ठीक, हमारे पास एक मैसेज आया है मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम कीर्ति नगर से हैं, वो कह रहे हैं मेरी एज 40 साल की है और मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई ज्यादा हो गई है और हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और बीच बीच में मतलब कम हो जाता है लेकिन डाइजेशन बिल्कुल सही है मेरा, तो आयुर्वेद में इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई उपाय बताइए।
1: यस जैसे कि इन्होंने हेयर में बताया हुआ है कि हेयर फॉल हो रहा है और स्किन भी ड्राई हो रखी है.
0: जी जी
1: ठीक है. तो यहाँ पे ना अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो इनका वात बढ़ गया है. ठीक है. तो इसके वजह से स्किन में ड्राइनेस भी होता है और बाल भी झड़ते हैं. ठीक है. इसमें बाल रूट से भी जा सकते हैं या बीच में से भी ब्रेक हो सकता है देखा जाए तो.
0: जी.
1: तो इनके लिए ना इंटरनली कुछ चीज़ें अगर फॉलो कर सकते हैं दैट विल बी गुड. जैसे आंवला खाना, सुबह उठ के खाली पेट ये आंवला खा सकते हैं. उसी के साथ साथ घी का इंटेक कर सकते हैं. जैसे दोनों मील्स में घी ले सकते हैं लाइक 1 स्पून. ठीक है. इसी के साथ साथ अगर ये ऑयलिंग करेंगे हफ्ते में 2 बार बालों के लिए दैट विल बी गुड. मगर बालों जो हेयर ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से इनको यूज़ करना है. ठीक है. एंड स्किन के लिए कोई अच्छा मॉइस्चराइजर जिसमें बटर्स या फिर ऑयल अच्छे से हो, अच्छे से प्रमाण में हो.
0: जी जी. तो कुल मिलाकर यदि आप घी लेंगे तो आपकी ये समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है. अच्छा मैम, आपने एक अभी बातें कर में आपने ये भी बताया था कि गट हेल्थ जो होती है हमारी वो भी हमारी स्किन और बालों से जुड़ी हुई है.
1: यस.
0: तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप?
1: सो आयुर्वेदा में ना आप कुछ भी खाते हो ठीक है तो जैसे हमारी पाचन शक्ति रहती है तो पहले बनता है आहार रस, उसके बाद में सारे धातु बनते हैं.
0: जी
1: ठीक है. तो जैसे रस धातु जो है उसके बाद रक्त धातु बनता है. तो जो स्किन रहती है उसका अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये रस धातु से कोरिलेट करते हैं. ठीक है. अगर आप खाने पीने में सारी चीजें बराबर से लोगे तो ऑफकोर्स आपका रस धातु अच्छा बनेगा, रक्त भी अच्छा बनेगा, दैट इज योर ब्लड. बहुत बार हम स्किन की जो भी बीमारियां है वो ब्लड से भी कोरिलेट करते हैं. ओके. तो आपका ब्लड भी अच्छा बन रहा है तो आपका स्किन ऑफकोर्स ग्लोइंग रहेगा. जैसे अस्थि धातु है ठीक है, फिफ्थ धातु जो बोला गया है वो अस्थि धातु है, मतलब आपके बोन्स है. इसका कोरिलेशन हम आयुर्वेदा में हेयर के साथ करते हैं.
0: ओके.
1: ओके. इसको आइदर बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, हेयर अस्थि धातु का बाय प्रोडक्ट होता है हेयर, या उपधातु. ठीक है. जैसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो धातु बनता है उपधातु बनता है वो हेयर हम बताते हैं, हेयर या नेल्स. तो अगर आपका पोषण प्रॉपरली हो रहा है, आपका आहार रस अच्छे से बन रहा है, सारे धातु को अगर पोषण मिल रहा है तो ऑफकोर्स आपकी स्किन और बाल अच्छे बनेंगे. अगर आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं तो विटामिन्स की डिफिशियंसी है, प्रॉपरली खाने पीने में चीज़ें नहीं फॉलो हो रही है, तो ये सारा जो है अफेक्ट करता है आपके आहार रस पे और इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करेगा आपके आगे के धातुओं पे और स्किन और बालों पे भी अफेक्ट करेगा.
0: जी. आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन की और हमारे साथ हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर दीपाली पिसाल. यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप स्टूडियो में हमें सीधे फोन कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 011-2342-1080 और दूसरा नंबर है 011-2342-1084.

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हमारे एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो
5: हेलो
4: जी, कहाँ चले गए थे आप?
5: हेलो
4: बताइए। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी?
5: हेलो जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
4: जी राकेश जी, पूछिए आपका सवाल, पूछिए।

0: हेलो, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। और मेरा एक सवाल है कि जैसे कि कुछ लोग जो है बालों को स्ट्रेट करते हैं और क्या बोलते हैं, वो कितना घातक है? और दूसरी बात, ये जो मेरे बालों के पीछे फोड़े आते हैं, तो उसका क्या कारण है? ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। ये है राकेश, और आई थिंक इन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो लेकिन इनका सवाल हम तक बिल्कुल पहुंच गया है। मैम, ये जानना चाहते हैं कि जो आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पर लोग यूज़ कर रहे हैं, साथ में स्ट्रेटनर यूज़ किया जाता है बालों को सीधा करने के लिए, तो वो किस हद तक अच्छा रहता है?
2: ओके, सो राकेश जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो जैसे ना, स्ट्रेटनिंग के लिए आइदर आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हो, या बहुत से आजकल केमिकल ट्रीटमेंट्स है जैसे बुटॉक्स वगैरह किया जाता है या हेयर स्ट्रेटनिंग किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी जैसे स्ट्रेटनिंग के लिए या बुटॉक्स और स्ट्रेट हेयर्स के लिए जो भी आप प्रोसीजर्स करवाते हो, तो ये जो सारी चीज़ें ना, केमिकल्स आपके स्काल्प पे लगाए जाते हैं, तो ये सेफ नहीं है। ओके, और ये क्या परमानेंटली आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करेगा, ये लाइक 2 to 3 months तक ही आपको इफेक्ट दिखेगा, मगर उसके बाद जो स्काल्प में ड्राइनेस होना या फिर स्काल्प में इन्फेक्शन होना, ये अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, ये होने आप करते हो ऐसे प्रोसीजर्स, उसके बाद ना देखा जाता है कि विद इन 2 to 3 months हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत से पेशेंट्स मेरे आते हैं ये कंप्लेंट लेके कि मैंने 2 महीने पहले या 3 महीने पहले बुटॉक्स करवाया था, तब हेयर फॉल नहीं हुआ, मगर अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये हेयर की साइकिल ही है, जो भी आपको जो भी नज़र आता है वो 2 to 3 months के बाद ही नज़र आता है आपको। अगर कुछ बीमारी है उसके बाद अगर हेयर फॉल है, वो भी 2 to 3 months के बाद ही दिखाई देगा। ठीक है, तो जो भी आप लगा रहे हो, सो केमिकल्स है तो प्लीज़ अवॉइड करो, स्काल्प पे नहीं लगाना है आपको कोई भी केमिकल्स। आपके जो स्ट्रेटनिंग टूल्स जो आते हैं वो भी आपको यूज़ नहीं करने, इससे आपके बाल ड्राई होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और अगेन वो टूटने की राह पे ही रहते हैं।
1: एक सवाल आया है, सौरभ लिख रहे हैं गुड़गांव से, कहते हैं मैं 50 साल का हूँ और मेरे जो सिर के ऊपर है ना, काफ़ी ज़्यादा हेड स्कैल्प के ऊपर एक्ने हो गया है, तो इसके लिए थोड़े से कुछ घरेलू उपचार बताए।
2: सी सो हेड के ऊपर अगर एक्ने है, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन की साइन है, इसको कोई भी आपके होम रेमेडीज़ वोंट हेल्प यू, मतलब हेल्प नहीं करेंगे, आपको इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन करना पड़ेगा, कोई भी आपके स्किन और हेयर डॉक्टर के पास आप दिखा सकते हो इसके लिए। ठीक है, बिकॉज ये इन्फेक्शन की साइन है, इसको घरेलू उपचार से कम नहीं किया जा सकता।
1: ओके, तो कुल मिलाकर बात इतनी है, यदि आपके बालों में कोई भी एक्ने हो गया है, कोई फोड़ा या फुंसी हो गई है, ये हमारे जो लिसनर जिन्होंने कॉल किया था उन्होंने भी दूसरा सवाल पूछा था कि उनके सिर में भी इस तरह की परेशानी है, तो उनके लिए मैम ने बताया है कि आपको ये घरेलू उपचारों से ठीक नहीं होगा, इसके लिए आपको बकायदा ट्रीटमेंट लेना होगा। ट्रीटमेंट के लिए मैम किनके पास जाना चाहिए?
2: देखो, आयुर्वेदा डॉक्टर तो है ही
1: जी,
2: उसके साथ साथ आप डर्मेट के पास जा सकते हो, तो वो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में हेल्प कर सकते
1: जी है। तो आप जाइए, और तब तक हम आपको सुनाते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक और लगे हाथ। यदि आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जो लिसनर्स हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनके लिए एक बार फिर से मैं हमारे फ़ोन नंबर्स बताना चाहूँगी, 011-2342-1080 और 011-2342-1084। और यदि आप WhatsApp के माध्यम से अपना सवाल पूछना चाहते हैं हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन के लिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: जी हाँ, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कब से क्या हो जाता है, स्किन हमारी खराब होने लगती है या फिर बाल हमारे टूटना शुरू हो जाते हैं या फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं और एक नया अफसाना बन जाता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो इसीलिए हम लेकर आए हैं आज प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इसी विषय पर। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर दीपाली पिसाल। तो मैम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो। ओके, ये कॉलर भी लाइन पर नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ एक सवाल पहुंचे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो हम देखते हैं उनका क्या सवाल है। एक सवाल आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ये कहते हैं, डॉक्टर मेरे बाल जो हैं वो पहले स्ट्रेट हुआ करते थे, सिल्की हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों से, लगभग 5 सालों से इन्होंने लिखा है कि वो हैवी कर्ल्स होते जा रहे हैं और फ्रिजी भी होते जा रहे हैं, और उम्र इन्होंने अपनी बताई है 28 साल। तो थोड़ा सा इसकी रेमेडी कोई बता दीजिए।
1: ओके, सो आपके जैसे बाल पहले स्ट्रेट थे और अभी फ्रीजी हो रहे, इसकी वजह से आपको वो कर्ल्स नज़र आ रहे होंगे।
0: ओके,
1: ठीक है
0: जी।
1: तो यहाँ पे ना जो बालों का मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं तो कम हो गया है। तो इसको अगर ठीक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो आपको शैम्पू यूज़ कर रहे हो ना, ये पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री यूज़ करना है। ठीक है, अभी तो मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं जिसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, ऐसे बहुत से ब्रांड्स आए हुए, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको कंडीशनर यूज़ करना है। ठीक है, कोई भी अच्छा कंडीशनर आपको लगाना है। आप अगर स्टाइलिंग कर रहे हो, कोई भी कर्लिंग या फिर कोई भी टूल्स यूज़ कर रहे हो स्ट्रेटनिंग वगैरह के लिए, तो वो बंद करना है या अवॉइड करना है। ठीक है, अगर हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो तो वो भी, उसका भी इस्तेमाल कम कर देना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाती है।
0: जी,
1: ठीक है। इसी के साथ साथ आपको खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे घी का इंटेक अच्छा रखना है, आंवला, मैंने पहले भी बोला था आंवला आपको स्टार्ट कर सकते हो, आप आंवला ले सकते हो। ठीक है, स्काल्प में लगाने के लिए आप एक मास्क ट्राई कर सकते हो, जैसे फ्लैक्स सीड्स जो आते हैं, जैतून के बीज आते हैं, वो और आपका चावल, उसको थोड़ा सा उबालना है और उसको छान के आपको ये पानी लगाना है और 30 मिनट तक रखना है और फिर वॉश करना है। ठीक है, ये जो है ये आप स्काल्प पे भी लगा सकते हो और बालों को भी लगा सकते हो, तो इससे भी मॉइस्चर काफ़ी हद तक अच्छी रहती है।
0: अच्छा मैम, जो हमारे पास कॉलर आए थे उनका बात नहीं हो पाई, लेकिन उनका सवाल ये था कि उनके सिर के ऊपर ना सफ़ेद पपड़ी बनने लगी है, तो उसका क्या इलाज है?
1: ओके, तो ये जो सफ़ेद पपड़ी बन रही है ये डैंड्रफ है।
0: जी,
1: ठीक है, तो डैंड्रफ ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है ये। फंगस नॉर्मली हमारे स्काल्प पे होती है।
0: अच्छा,
1: ठीक है जी। मगर ये प्रॉब्लम कब करता है, ये बढ़ता कब है, जब भी स्काल्प की हाइजीन मेंटेन ना हो। ठीक है, आप अगर हफ्ते में 2 या 3 बार बाल अच्छे से नहीं धो रहे हो, स्काल्प प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रहा आपका, तो ये फंगस बढ़ता है। उसी के साथ साथ अगर बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर रहे हो तो इसकी वजह से भी ये बढ़ सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों में ये सोच होती है कि डेली ऑयलिंग करनी चाहिए, या मतलब ऑयलिंग करके उसे कई घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए, उसके बाद सिर वॉश करना चाहिए, तो क्या ये बात सही है?
1: नहीं, आपको डेली ऑयलिंग नहीं करनी है। आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग करोगे तो भी चलेगा।
0: और कुछ कितने घंटे उसे रखना चाहिए?
1: सी, अगर स्काल्प ड्राई है तो आप ओवरनाइट रख सकते हो। आपका स्काल्प अगर ऑयली है पहले से,

0: तो आपको 1 घंटा रखना है और फिर वॉश करना है
1: जी। और अच्छा, इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपने अभी जैसे फ्लैक्स सीड से यानी अलसी के बीज जो होते हैं उनके बारे में बताया कि आप उनका लगाना चाहिए, तो और किस तरह से मतलब और क्या क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं?
0: ओके, तो भृंगराज, आमला, जटामांसी, ब्राह्मी, इसका भी आप मास्क लगा सकते हो
1: जी। ठीक है, तो इनमें मतलब केवल इन्हीं को पीस कर हमें लगाना है या इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड होनी है?
0: यस, तो आपकी स्काल्प अगर ड्राई हो तो आप इसको दही में मिक्स करके लगा सकते हो
1: जी।
0: ठीक है, आपकी स्काल्प अगर ऑयली हो तो इसी दही को मतलब छांस में मिक्स करके, मतलब छांस लेके इसमें सारी ये इंग्रेडिएंट्स डाल के आप मिक्स कर सकते हो। ठीक है, छांस इसलिए क्योंकि उसका फैट जो है दही का वो निकल जाता है तो वो कम ऑयली देता है। ठीक है, इसी के साथ साथ नॉर्मल पानी में भी मिक्स करके लगा सकते हो आप ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके साथ साथ आयुर्वेदा में कुछ प्रोसीजर्स बोले हैं, थेरेपीज बोले हैं, जैसे शीरो अभ्यंग, नत्स्य और शीरोधारा, ये भी बहुत यूजफुल होता है अगर आपके बालों में कुछ प्रॉब्लम्स है तो।
1: जी, हमारे पास मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070। लेकिन अभी जो वक्त है वो है एक छोटे से ब्रेक का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज आपके साथ हूं मैं रश्मि, और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दीपाली पिसाल, जो बता रही हैं किस तरह से आप अपनी स्किन और अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। मैम, हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं तो मुझे लगता है हम थोड़े से वो ले लेते हैं। एक मैसेज आया है, 51 साल के ये हैं, मेल हैं, हिमांशु आनंद इनका नाम है, कह रहे हैं मैं 3 साल से मेरे माथे पर फोरहेड के ऊपर डार्क पैचेस हो रहे हैं, तो प्लीज़ उसके लिए कोई सोल्यूशन बताएं।
2: ओके, सो कंसिडरिंग आपका एज, यहाँ पे थोड़ा सा हार्मोनल भी हो सकता है ये पिगमेंटेशन, या फिर जो धूप की वजह से जो पैचेस आते हैं वैसे भी हो सकते हैं। ठीक है,
1: अच्छा, जी।
2: तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आपकी स्किन अगर ड्राई हो तो ऑफकोर्स क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र, अगर ऑयली हो तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपको लगाना है। इसी के साथ साथ आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल डेली करना है।
1: ओके, ठीक है। अच्छा, सनस्क्रीन में कितना SPF होना चाहिए, ये भी एक मतलब कन्फ्यूजन रहती है किसको या किस एज ग्रुप को कितना SPF लेना चाहिए।
2: एटलीस्ट 50 SPF तो होना चाहिए।
1: फॉर मतलब विच एज,
2: लाइक फ्रॉम आप 15 साल से ऊपर आप 50 SPF यूज़ कर सकते हो।
1: ओके, और यदि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या हमें उनको भी यूज़ कराना चाहिए?
2: हाँ, छोटे बच्चों का अलग सा फॉर्मुलेशन आता है, आप वो लगा सकते हो उनको, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनको भी अगर धूप में लेके जाते हो तो उनकी भी स्किन एल्बोज, स्पेशली एल्बोज या फिर ये नी जॉइंट्स पे ज्यादा पिगमेंटेशन रहता है।
1: ओके, एक मैसेज आया है, उपदेश शर्मा लिख रहे हैं, मेरी उम्र 29 साल है।

0: मेरे फेस पर पिगमेंटेशन हो गई है और बाल भी आ रहे हैं, और साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि वाइट भी हो रहे हैं, तो इसके लिए कुछ आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे कौन से योग आसन और प्राणायाम करना चाहिए? क्या आयुर्वेद और योग आसन जुड़े हुए हैं आपस में?
1: यस यस यस, योगा और आयुर्वेदा जुड़े हुए हैं, तो योगा से आपका स्ट्रेस बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है,
0: जी
1: ठीक है। आप योगा करो, उसी के साथ साथ आयुर्वेदा की चीज़ें भी अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। पिगमेंटेशन के लिए आप मुल्तानी मिट्टी, उसी के साथ साथ हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक अगर मिल जाए तो
0: अच्छा
1: वो, ठीक
0: जी,
1: है। और चंदन, इसका मास्क आप लगा सकते
0: तो
1: हो।
0: ये किसी भी जिनके यहाँ जड़ी बूटियां मिलती हैं उनका मिल जाएगी
1: हाँ,
0: वाइल्ड हल्दी जो आपने
1: यस
0: बताई
1: यस
0: है?
1: यस,
0: जी
1: ओके। तो इसका मास्क आप लगा सकते हो, ये पिगमेंटेशन को कम करेगा। मगर उसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी कहा था, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है आपको, और आपका मॉइस्चराइजर अच्छे से यूज़
0: जी
1: करना है।
0: पैंथर तोमर लिख रहे हैं किशनगंज दिल्ली से, कहते हैं त्वचा पर जले हुए निशान को कैसे हटा सकते हैं, क्या इसका भी कोई उपचार है आयुर्वेद में?
1: अगर अभी ताज़े जले हुए निशान है तो आयुर्वेदा में एक शतधौता घृत करके आता है, जो 100 बार घी को पानी से निकाला जाता है, वॉश किया जाता है, और फिर ये बनता है शतधौता घृत, तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है।
0: जी
1: और अगर बहुत पुराना है तो फिर बहुत मुश्किल है ये दाग निकलना, ठीक
0: कम
1: है,
0: हो सकता
1: कम
0: है?
1: हो सकता है,
0: जी,
1: तो इसको शतधौता घृत, और सेकेंड थिंग जो है कुमकुम आदि ऑयल,
0: ओके।
1: ठीक है, तो ये लगा सकते हो, दोनों चीज़ें।
0: शालू का मैसेज आया है शादीपुर से, उम्र है इनकी 28 साल, इनका भी यही सवाल है, हेयर फॉल और वाइट हेयर हो रहे हैं, तो आई थिंक इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा।
1: यस,
0: एक और मैसेज आया है लिखने वाले हैं मीरा सिंह सिलचर आसाम से, कहते हैं मेरी उम्र जो है वो 55 साल की है, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने बोला 55 साल के बाद हेयर फॉल ना हो और स्किन अच्छी रहे, इसके लिए मैं क्या करूं?
1: अच्छा, तो अगेन आपको अच्छे से,
0: हाँ, एक इनका सवाल और भी है, क्या मेहंदी लगाना जो हिना सिर में लगा लेते हैं वो सही रहता है, लगानी चाहिए?
1: अगर आपके ग्रे हेयर्स है और आपको उसको छुपाना है या दिखाना नहीं है ज़्यादा ग्रे
0: जी
1: हेयर्स हो रहे हैं, तो आप हिना लगा सकते हो। मगर मेक श्योर कि आपकी जो हिना है वो प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो सब कुछ अडल्ट्रेटेड है, उसमें कलर्स मिक्स किए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद ना, हिना के बाद आप इंडिगो लगा सकते हो, तो काफ़ी हद तक ये नेचुरल ब्लैक कलर देता है आपके बालों को, ठीक है।
0: जी
1: और क्या सा सवाल,
0: और इनका सवाल यही था कि
1: बालों की सेहत
0: हाँ
1: कैसे
0: बालों
1: रहती
0: की
1: है?
0: सेहत, मतलब 55 साल की उम्र के बाद, इसका मतलब यही है कि इनकी उम्र जो है 55 क्रॉस कर चुकी हैं और ये चाहती हैं कि उनकी अभी भी स्किन जो है और बाल जो हैं वो अच्छे रहें।
1: कंसिस्टेंसी ये की होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप अगर मतलब एक दिन के लिए फॉलो कर रहे हो, एक हफ्ते के लिए फॉलो कर रहे हो, तो वो नहीं फायदेमंद करेगी। आपको डेली आपका रूटीन अच्छे से फॉलो करना है। पहले भी मैंने कहा था, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, इस पे ध्यान देना है, और बाकी की चीज़ें जैसे बताइए वैसे फॉलो करो, तो एक अच्छा आपको स्किन और हेयर में रिजल्ट मिलेगा।
0: जी एक मैसेज आया है, हरीश वशिष्ठ लिख रहे हैं, कहते हैं मेरी बेटी 15 साल की है, उसकी आईब्रो और पलकों के हेयर बाल गिर जाते हैं, और ऐसा 3-4 बार हो चुका है पिछले 1 वर्ष में, तो इसके लिए कोई उपचार बताइए?
1: इसके लिए घरेलू उपचार फायदेमंद नहीं रहेगा, इनको प्रॉपरली कंसल्टेशन करना पड़ेगा डॉक्टर से।
0: जी तो
1: यस,
0: हरीश जी, आई थिंक आपने ये बात सुन ली होगी। अच्छा मैम, मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों के जो आईब्रोज और पलकों के बाल सफेद भी होने लगे हैं, तो क्या वो भी उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए या उसका आयुर्वेद में इलाज है?
1: या उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, आयुर्वेद में इलाज है इसका। ऑफ कोर्स जो दोष बड़े हैं इसकी वजह से ही बाल वाइट हो रहे हैं, तो आयुर्वेदा इसको काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आप प्रॉपरली डाइट और मेडिसिन्स, आपको इसकी ज़रूरत लगेगी
0: अच्छा
1: इसमें।
0: जैसे अब आपने डाइट की बात बताई, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो किसी के लिए भी अच्छा खान पान और लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जैसे आपने शुरुआत में भी कार्यक्रम के बताया था, तो थोड़ा सा इलैबोरेट करके आप बता सकते हैं हमारे लिसनर्स को कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए या खान पान में क्या चीज़ हम बढ़ाएं या क्या खाएं कि हमारी स्किन भी अच्छी हो
1: अच्छा
0: जाए और बाल भी हमारे खूबसूरत बन जाएं?
1: पहले तो आपको एक प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करना है, ठीक है? तो प्रोटीन से बस आप पनीर खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, ऐसे नहीं, दाल अपनी जो चीज़ है, दाल है या सोयाबीन है, इसका भी इंटेक कर सकते हो, ठीक है? इसी के साथ साथ आपको ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है? नमक का इंटेक कम करना है। बहुत लोगों में ये देखा जाता है कि ऊपर से नमक लेते हैं, कुछ भी पकवान बने हुए हैं और ऊपर से नमक डालते हैं, तो ये पहले बंद कर देना है, ठीक है? इसी के साथ साथ आपको सैलेड इंक्लूड करना है आपके दोनों मील्स में, गाजर, ककड़ी, खीरा, मतलब ये होना चाहिए। फ्रूट्स होने चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट है, ठीक है, जो भी सीज़न चल रहा है उस हिसाब से आपको फ्रूट्स लेने हैं। और पानी का इंटेक अच्छा रखना है, घी लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और टाइम पर खाना है मेन तो।
0: जी जी जी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय पर खाएं, अच्छा खान पान खाएं, और खाने में प्रोटीन कोई मात्रा ज़रूर बढ़ाएं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सोया खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, और लेकिन कुछ एक डिसीज़ ऐसी होती हैं जो आमतौर पे आजकल लाइफस्टाइल डिसीज़ कहा जाता है, किसी को डायबिटीज़ है या बीपी है और या थायराइड है, तो उनकी एक स्पेसिफिक डाइट होती है, उसमें जैसे सोया नहीं लेना है या नमक कम लेना है, तो क्या उनकी वजह से भी हमारी स्किन और बालों के ऊपर असर आता है?
1: हाँ, अगर आपको कोई भी डिजीज कंडीशन है, स्पेशली जैसे डायबिटीज है या पीसीओडी है या थायराइड है, तो इसमें हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ रहता है
0: जी,
1: तो बाय डिफॉल्ट आपके बाल झड़ना या फिर बालों का ग्रेइंग होना या फिर स्किन पे पिगमेंटेशन होना, पिंपल्स आना, ये चीजें होती है
0: जी। तो आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन की। हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर दीपाली पिसाल, जो आपको इसी विषय पर बता रही हैं। आगे भी हम यूं ही बात करते रहेंगे। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं 0112342108 और 0112342108। साथ ही यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन और आज आपकी ग्लास स्किन बनाने के लिए, आपके बालों को खूबसूरत बनाने के लिए हम लेकर आए हैं रेनबो हेल्पलाइन में यही विषय। मैम, जनरली ना सब लोग आजकल स्किन केयर करना चाहते हैं, करते भी हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन ये रहती है कि सुबह उठ के ऐसी क्या चीज़ लगाएं जो सारे दिन स्किन हमारी अच्छी रहे, या फिर रात को सोते वक्त क्या ट्रीटमेंट करें या क्या स्किन केयर करें, तो थोड़ा सा मॉर्निंग क्रीम और नाइट क्रीम के बारे में और बताइए।
1: यस यस, सो पहला पॉइंट जो है, मैंने पहले भी बोला था, कंसिस्टेंसी इसकी। अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे हेयर चाहिए, तो आपको एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाना है, ठीक है? अब बात करेंगे मॉर्निंग स्किन केयर के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो जो कोई भी फेस वॉश है या फेस क्लींजर है, ये माइल्ड होना चाहिए, ठीक है? अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जैसे अगर ड्राई स्किन है तो आप क्रीम टेक्सचर वाले जो फेस वॉश आते हैं उसके साथ जा सकते हो। अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना है। इसमें भी आपको पैराबिन फ्री या सल्फेट फ्री फेस वॉश चूज़ करना है। सेकेंड थिंग आपका आपको जो लगाना है वो आपका मॉइस्चराइज़र है, ठीक है? तो इसमें भी आजकल बहुत तरीके के मॉइस्चराइज़र आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो स्किन टाइप है, ड्राई या ऑयली। ऑयली के लिए स्पेशली ऑयल फ्री या फिर सीबम कंट्रोल, ऐसे आपको मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने हैं। ऑयली स्किन के लिए भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? थर्ड थिंग, आप उसके बाद आपका सनस्क्रीन लगा सकते हो, ठीक है। आप धूप में कितना चाहते हो उस हिसाब से आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। अगर आपका धूप में जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको हर 2 या 2.5 घंटे के बाद सनस्क्रीन रिपीट करनी है
0: जी,
1: ठीक है। और अगर इनकेस आपको इसमें सीरम भी ऐड करना है मॉर्निंग रिजिम में, तो आप फेस वॉश के बाद सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइजर, फिर आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। और उसके ऊपर आप कोई भी आपका मेकअप, BBCC क्रीम, जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो। नाइट का जो रिजिम रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज नाइट टाइम में हमारी स्किन रिपेयर होती है, ठीक है। तो इस समय हम अगर एक्टिव्स यूज करेंगे तो वो अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो

0: इस समय आप कोई भी अच्छा सा सीरम, जैसे आपके जो भी टारगेटेड चीज़ें, जैसे अगर पिगमेंटेशन है तो आप कोजिक एसिड बेस्ड सीरम्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्ने है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स यूज़ कर सकते हो,
1: जी
0: तो ये यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। आयुर्वेदा में बहुत एक अच्छा फॉर्मुलेशन है, दैट इज़ कुमकुम आदि ऑयल, ठीक
1: ओके
0: है।
1: जी
0: तो आप ये यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये हर रात लगा सकते हो।
1: अच्छा, जिनकी स्किन मिक्स बैच होती है, कहीं से
0: यस
1: ड्राई है कहीं से ऑयली है, वो भी इसे यूज कर सकते हैं।
0: हाँ, अगर आपकी स्किन मिक्स में है और एक्ने प्रोन है तो आपको लगाना है एक, मतलब हल्के से, लाइक टू टू 1 से 2 बूंद ही लेना है आपको,
1: जी
0: ठीक है। और अच्छे से स्प्रेड करना है उसको, ज़्यादा मसाज नहीं करना, और थोड़ी देर के बाद बस नॉर्मल पानी से धो देना, जो भी एक्सेसिव ऑयल है वो निकल जाएगा, तो आपकी स्किन ग्लोई भी बनेगी और जो भी पिगमेंटेशन है वो भी कम होते जाएगा, अगर आपको कुमकुम आदि ऑयल लगाना है। अगर ड्राई स्किन है तो ओवरनाइट रख सकते हो, मतलब रात भर आपको इसको लगा के रखना है।
1: जी मैम, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है और
0: यस
1: कुछ एक मैसेजेस और हम तक पहुंच गए हैं। एक मैसेज आया है, इन्होंने नाम अपना नहीं लिख, राघव गुप्ता लिख रहे हैं, 26 साल के हैं, कहते हैं मैं 17 साल का था तब से मेरे स्कैल्प का पर डेड स्किन बनती है, खुजली होती है, फ्लेक्स निकलते हैं, तो क्या ये डर्मेटाइटिस है? और मैंने अब तेल लगाना छोड़ दिया है, तो क्या ये सही कर रहे हैं?
0: तो ये डर्मेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे ऑलमोस्ट 17 के है तब से ये प्रॉब्लम है इनको,
1: जी
0: ठीक है। इसमें ऑयल लगाने से फ़ायदेमंद नहीं होगा,
1: जी
0: इनको भी मैं कहूँगी कि आपको एक बार आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी।
1: 10 साल की मेरी बेटी है, नीति लिख रही है नोएडा से, उसके सर में जुएं हो गई हैं, अनियन जूस भी ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो क्या करें?
0: नहीं, ऑनियन जूस से नहीं फ़ायदा होगा इनको, जो भी जुए निकालने के लिए शैम्पूज आते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, उससे ही ये कम होगा, या फिर फिजिकली इनको निकालना पड़ेगा।
1: ओके सचिन लिख रहे हैं, कहाँ से, इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं, मेरी स्किन जो है ड्राई होने लगी है, तो प्लीज़ उसके बारे में बता दीजिए कि उसको मैं ठीक कैसे करूं। आई थिंक ये तो सबकी स्किन जो होती है, सबका प्रकार होता है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की मिक्स होती है, फिर भी इनके लिए।
0: तो हमारा लाइक जैसे स्किन मैच्योर होता है तो ड्राइनेस की तरफ बढ़ता है, अगर देखा जाए तो हम 15-16 साल के रहते हैं तो थोड़ा सा ऑयलीनेस या एक्ने आना, पिंपल्स आना ये रहता है, मगर जैसे ही हम थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, 30-35 एज के बाद स्किन थोड़ा सा ड्राइनेस हो सकता है, ड्राइनेस आ सकती है स्किन में, तो इसके लिए आपको हाइड्रेट रहना है, अच्छे से पानी पीना है, सैलड खाना है, घी लेना है इनटेक, और आपको जैसे मैंने बताया कुमकुम आदि ऑयल या शतधोतोकृत आप लगा सकते
1: अब हम चलते चलते, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, एक और, हालांकि हमारे कॉल मैसेज आया है 36 से, कृष्णा कुमार साहू का, 52 साल के हैं, लेकिन आई थिंक इनके सवालों का जवाब इनको मिल गया होगा, बाल झड़ते हैं इनके और उसी के लिए ये पूछना चाहते थे। और लेकिन चलते चलते हमारे युवाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि आजकल युवा वर्ग बहुत जल्दी में है और चाहता है कि उनके सवालों का जो जवाब है वो जल्दी से उन्हें मिल जाए, तो उनके लिए कुछ टिप्स देते जाइए।
0: तो उनके लिए एक तो ये टिप है, सोशल मीडिया पे जो भी DIYs आप देख रहे हो वो आपको फॉलो नहीं करना है। जैसे बेकिंग सोडा है, नींबू है, आप डायरेक्टली अगर लगा रहे हो आपके बालों के ऊपर या स्किन के ऊपर, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है आपको, एक प्रॉपरली हेल्दी लाइफस्टाइल और नरिशमेंट रखनी है, ठीक है,
1: और आई
0: जिससे
1: थिंक नींद भी पूरी करनी है।
0: यस, नींद सबसे
1: जी
0: इम्पॉर्टेंट है
1: जी
0: ये, ठीक है। तो ये इंटरनली आपकी सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, अच्छा ही हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन देने में हेल्प करेगा।
1: जी
0: जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंट रखो, अगर
1: जी
0: कोई ऑयल लगा रहे हो तो उसमें भी कंसिस्टेंसी रखो,
1: जी
0: हर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट काम करेगा ऐसे नहीं है,
1: जी
0: ठीक
1: जी
0: है।
1: जी
0: और हर
1: तो आज हमारे साथ रही हमारी डॉक्टर पिसाली दीपाली पिसाल, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर दीपाली पिसाल जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट थी, और आज इन्होंने हमें बताया हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन के बारे में। मैम आप यहाँ पर आईं और आपने इतने अच्छे अच्छे टिप्स हमारे लिसनर्स को दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए,
1: थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: आकाशवाणी
1: और ये है वाणी सुषमा की। और सुषमा की वाणी आज आ गई आपके आशियाने की बात करने के लिए। जी हाँ, आशियाना मेरा भी हो सकता है और आपका भी, लेकिन आज का जो आशियाना है वो हमारी आकाशवाणी की ही बात करने वाला है। बिल्कुल, तो ये जो मौसम आ रहा है ये है हमारे रेडियो की बात करने वाला।

दोस्ती का मौसम आ गया है और दोस्ती हमारी रेडियो से है, यानी ट्रांजिस्टर से रेडियो है। आपको पता है ना कि क्रांति जब आई थी रेडियो की, तो इस तरह से आई थी कि जो हमारे ड्राइंग रूम में सजे होते थे बड़े बड़े रेडियो सेट, वो आज हमारे पॉकेट में आ गए हैं। और पॉकेट भी कहाँ, हमारे मोबाइल में आ गए। सोचे जरा कितना लंबा सफर रहा होगा हमारा रेडियो का। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी ट्रांजिस्टर की। और पूरा परिवार एक साथ बैठा करता था और जिसकी आवाज, उस रेडियो की आवाज खेतों से लेकर शहरों तक कितनी गूंजा करती थी। और

ने मनोरंजन के साथ साथ बहुत सारी जानकारियां भी घर घर पहुंचाई। जी हाँ, जिसने हमारा आशियाना खूबसूरत बना दिया वो है हमारा रेडियो। आकाशवाणी भी अपने पूरे 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इसी रेडियो की, जो हमारी सबकी धड़कनों में है।

बिल्कुल, और रेडियो भी हमारी धड़कनों में ही रहता है, आप जानते ही हैं। 1950 और 1960 के दशक में रेडियो हर घर की शान ही माना जाता था, आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद होगा, लकड़ी के बड़े बड़े रेडियो जो सेट होते थे वो घर में होते थे, बैठक में होते थे, और फिर शाम होते ही परिवार के सभी सदस्य उसके आसपास बैठ जाते थे, है ना, चाहे समाचार सुनने हो, गीत सुनने हो, नाटक सुनना हो, या फिर कोई विशेष कार्यक्रम जो आकाशवाणी आपके लिए लेकर आता था। लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था ये आकाशवाणी, हमारा ऑल इंडिया रेडियो। और रेडियो केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि पूरे देश को जोड़ने वाला एक माध्यम बन चुका था। और कुछ गाने ऐसे ही याद आते हैं कि तुम आए तो हवाओं में एक अलग ही नशा था, और वो था रेडियो का नशा, जो आपकी आज पॉकेट में भी है, आपके हाथ में है, रेडियो सेट में।

बिल्कुल, और क्या, कितने रंग थे हमारे आकाशवाणी के रेडियो के। भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा किए गए पहले प्रसारण के साथ हुई थी, और 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में दो निजी ट्रांसमीटरों से विधिवत शुरू हुई, और जिसका 1930 में राष्ट्रीयकरण करके इसे भारतीय प्रसारण सेवा नाम दे दिया गया, और 8 जून 1936 को इस सेवा का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR कर दिया गया। और यहीं से इस जादुई सफर की शुरुआत हुई, और जिसने देश को कई पीढ़ियों तक सूचना और मनोरंजन से जोड़ कर रखा। धीरे धीरे ये तकनीक बदली और फिर आया हमारा छोटा सा ट्रांजिस्टर। बैटरी से चलने वाला ये छोटा रेडियो लोगों की जेब तक पहुंच गया है। अब रेडियो सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा, बस में, यात्राओं में, दुकानों पर, खेतों में और चौपालों पर हर जगह ट्रांजिस्टर सुनाई देता है।

और भी आपका भी प्यार यही है रेडियो, मैं जानती हूँ। और किसानों की तो जान है ये, बिल्कुल हरित क्रांति और किसान। सोचिए जरा, भारत में हरित क्रांति के दौरान ट्रांजिस्टर की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। खेती से जुड़ी नई नई तकनीकों की जानकारी रेडियो से, उन्नत बीजों की जानकारी वो भी रेडियो से, और हाँ सबसे बड़ी जानकारी मौसम की जानकारी, और हाँ कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी तो रेडियो से ही मिल जाती थी। ये सब जानकारी गांव गांव तक आकाशवाणी के माध्यम से ही पहुंचती थी। किसान खेतों में काम करते हुए ट्रांजिस्टर सुना करते थे। छोटा सा रेडियो उनके लिए जानकारी और उम्मीदें दोनों लेकर आता था।

बिल्कुल, देश की बात होती है वहाँ देश के किसानों की बात होती है रेडियो के माध्यम से। और आकाशवाणी भी मनाने जा रहा है अपने पूरे 90 वर्ष, और उसी के उपलक्ष में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम भी। चलिए फिलहाल सुनते हैं इस गीत को।

बिल्कुल आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल आकाशवाणी के, और हम भी बात कर रहे हैं रेडियो की, तो जुड़े रहेंगे मेरे साथ। वैसे आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं कि आपके कैसे यादगार पल रहे आकाशवाणी के साथ, कैसे बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास, बिल्कुल 9868107070।

बिल्कुल चक दे इंडिया ही होता था रेडियो पर भी, क्रिकेट और कमेंट्री का जादू भी लोगों पर, लोगों के दिमाग पर, दिल पर हर जगह छाया हुआ था। ट्रांजिस्टर और क्रिकेट का रिश्ता भी बहुत खास रहा है दोस्तों। टीवी के पहले, आप जानते हैं कि टीवी के पहले के दौर में लोग क्रिकेट मैच सिर्फ रेडियो पर ही सुना करते थे। रेडियो कमेंट्री का रोमांच कुछ अलग ही होता था। चाय की दुकानों पर भीड़ लग जाया करती थी, लोग कान से ट्रांजिस्टर लगाए स्कोर सुनते रहते थे। क्या दौर था वो, हर चौके और छक्के के साथ लोगों की खुशियां बढ़ जाती थी। रेडियो ने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं रहने दिया, बल्कि उसे लोगों की भावना ही बना दिया। बिल्कुल उनकी जिंदगी में जब क्रिकेट की कमेंट्री होती थी तो बाहर ही आ जाती थी।

मेरी भी जो महबूबा है वो रेडियो बन चुका है इस वक्त, तो बिल्कुल बहुत प्यार है मुझे इससे, दिल नहीं करता कि कभी जुदा हो जाऊं इससे, लेकिन वक्त आएगा तो एक दिन मुझे भी जुदा होना ही पड़ेगा। ये तो नियति है, ये नियम है आकाशवाणी का कि एक समय के बाद आपको भी अलविदा या मेरा मतलब विदा कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापिस आती हूँ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी रेनबो पर ये जो वाणी सुन रहे हो ये है सुषमा की वाणी और प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। और आशियाना आज ट्यूसडे स्पेशल में अगर महिलाओं की बात ना की जाए तो फिर वो आशियाना कैसे कंप्लीट होगा, नहीं होगा ना बिल्कुल। तो रेडियो की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम 90 वर्षों की पूरे सफर की बात कर रहे हैं कि 90 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं जून में, और महिलाओं और परिवार का साथी अगर रेडियो नहीं हुआ तो फिर कौन हुआ। बिल्कुल, महिलाओं के जीवन में भी ट्रांजिस्टर की खास जगह थी। रसोई में आप खाना बना रही हूं, उस समय आप गीत सुन रही हूं और साथ साथ खुद भी गुनगुना रही हूं, सोचिए उस दौर को। और दोपहर में आप नाटक सुनने वाली हूं, महिला कार्यक्रम सुनना हो और सुबह सुबह जो भक्ति रस में डूबना चाहते हो उनको सुनने हो भजन, और शाम को फिर समाचार। यानी रेडियो घर के वातावरण को जीवंत बना देता था, और कई महिलाओं के लिए तो ये जो हमारा रेडियो है वो मनोरंजन के साथ साथ दुनिया से जुड़ने का माध्यम भी बन जाता था।

बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। और बहुत सारे हमारे आरजे इसकी तारीफें करने वाले भी लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, नेपाल से भी हमें कॉल कर रहे हैं, मेरा मतलब मैसेज कर रहे हैं, तुलसीपुर नेपाल से, बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। और गिद्दर बाहा पंजाब से भी सतपाल वर्मा जी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं रेडियो, और रेडियो के बिना जीवन नीरस है, ये भी मैसेज आ रहा है मेरे पास। और किसका मैसेज आ रहा है, सिलचर आसाम से भी मैसेज आ रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं रेडियो के, लेकिन रेडियो की जब बात आती है तो वाकई में दिल बहुत खुश हो जाता है।

0: बिल्कुल, ये डोर है ही ऐसी, कशिश है ही ऐसी। आज तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है, मोबाइल फोन और इंटरनेट ने दुनिया ही बदल दी है, लेकिन ट्रांजिस्टर से जुड़ी यादें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। वो छोटा सा छोटू मोटू सा रेडियो जिसने परिवारों को हमेशा जोड़ा, किसानों तक बहुत सारी जानकारी भी पहुंचाई और क्रिकेट को भी जुनून बना दिया। ट्रांजिस्टर केवल एक मशीन नहीं था, वो एक था हमारे दिलों का एहसास जो आज भी हमारी पुरानी यादों में कहीं ना कहीं जिंदा है। एक छोटा सा ब्रेक आपके लिए, फिर जल्दी ही आपसे दोबारा मिलूंगी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और इसी प्यारे से गीत के साथ मैं आपसे दोबारा मिलने वाली हूँ। अगला प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर और मैं मिलूंगी आपको अल्फाजन में। टिल देन टेक केयर और रेडियो का साथ इसी तरह बनाकर रखिए।

हाँ जी लवली समझा नहीं जाए गेट होने ले काइट्स लगा मुझे बा गे के लगा वास्ते जिंदगी डुबाल गी यदि प्रोग्राम से स्कूल ले समय पहुंच जाओ शे तो गाने हमें लास्ट गेट बजाए दिया से वंस अपन अ टाइम इन मुंबई लगा मुझे बा दिया से और गेट ला नाम से आई एम इन लव इतो आसे केके और डोमिनिक सेरेजो लगा आवाज दिया से और क्वानिशना वंस अगेन एकदम मन बिखाइना कोई दिया से आज लगा प्रोग्राम तो एसएमएस जो लो पारा नहीं के लिए माने मैसेजेस खान एक तभी आए नहीं तो गाने हमें अपने लाइ रिक्वेस्ट खान तो बचाई दियो पारा नहीं मोरम बरा अपने खाने तो बुझाई दी भी और दूसरा टाइम दी जो लिवे हमें एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम था हम दे लो इन अब बुरी दिया हो अगर हमें खान लोग पाओ 9:30 डुएट्स एंड कोरस इन द फिल्म खान प्रोग्राम दे तो इतो नहाक अपनी खान सब अमी खान लोगों जुड़ थी आकाशवन एफ एम ट्रैक 103 मेगाहर्ट्ज़ से इतना अलोपास आनी दिवले आ प्रोग्राम 7:10 रीजनल खबर नागामी स्टे एंड सो यस अंटिल वी मीट अगेन आई होप यू हैव अ लवली इवनिंग आउट देयर और इतो गेट लोगों से हिंदी फिल्म खान प्रोग्राम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: the high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन वन ईयर, इफ नेसेसरी द टेन्योर ऑफ द कमिटी मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 6 months। विद अनुभव मिश्रा, दिस इज विष्णु पीएस, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
2: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
5: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
6: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months। हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल।
5: परिणाम लक्षित कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: मिस्टर शाह सेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्वड। ही स्ट्रेस्ड दैट सिंस ड्रोन्स लैंड इन द इंडियन टेरिटरी, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज असेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज रिसीविंग सच कंसाइनमेंट्स एंड टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स इफेक्टिवली। Quad Nations today launched the Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration aimed at strengthening the coordination in maritime surveillance. Addressing a press conference in New Delhi after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs, K. Nagaraj Naidu, said, "Foreign ministers strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism." He said that in the joint statement, terrorist attack in Pehelgam was condemned. Mr. Naidu said the meeting reaffirmed Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific.
7: The meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific and emphasized that the Quad continues to evolve as a practical and an action-oriented platform, delivering tangible benefits for the region. Discussions focused around four pillars of Quad cooperation. The first pillar is maritime and transnational security. Two, economic prosperity and security. Three, critical and emerging technologies, and four, humanitarian assistance and disaster response.
2: The Quad Foreign Ministers Meeting joint statement said the Quad nations discussed the situation in West Asia and reaffirmed support for ongoing diplomatic efforts and hope for lasting peace in the region. They reiterated the importance of adhering to international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause with respect to navigational rights and freedoms and the safety and uninterrupted flow of global commerce through the Strait of Hormuz and the Red Sea. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jayashankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said, "The Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity." He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism.
8: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
2: Dr. Jaishankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth.

0: है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

अपनी सुरीली परंपरा को निभाते हुए वीनस वर्ल्ड वाइल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आपकी मनपसंद म्यूजिक कंपनी, अपने चाहने वाले संगीत रसिकों के लिए एक और भक्तिमय उपहार प्रस्तुत कर रही है, जिसके रचयिता हैं जाने माने गीतकार और संगीतकार रवींद्र जैन, जिनकी मनमोहक धुनों और यादगार गीतों को सुनकर आप भक्ति की संगीत धारा में आनंद विभोर हो उठेंगे और आपके रोम रोम में राम लला और श्याम सखा बस जाएंगे।